पहला पहला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एन सरह एक लिव लागी साचे देख पति ना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका के सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी छिन्नी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी

कर पावसागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे।

जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें, जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहें। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग दिखम है जो

भगत खजाना गुरुमुख जाता सत गुरु बूझ बुझाए संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाए आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाए परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पा

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाण मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया कट अंतर।

एक पेक करें सिरे अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन पगत करें दिन राती, राम नाम उर्धारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन पगत न हुई कभी, सह पाए पगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया।

माँ तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जाग।

एक नाम वस्या कट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया और न करना जाई। आपे साजे सिर्फ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख न लखना जाई, आपे मार्ग वाले आप।

तो जन सूझे जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रिया विस्माद, मेरा प्रभ रविया सर्वथा।

किन्ही मून और दूत सदाया। कोई कह तो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्ही कया हो तीर्थवासी कोई अन पज पया उदासी। किन्ही पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावै पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, बिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन सरा।

इस सेवत मन आलस करे, जिस विसरे एक निमख ना करे। हम अपराधी निर्गुनिया रे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुर बोहित वड पागी मिलिया। नानक दास संग

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर ऊजल होत, नाम जपत सब परम पौष होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तय

की कृपाएं संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाए पूरे गुर पूरी मत दिनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाए काल स्यानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई।

अला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आप जुगादी है भी हो सी सब दुनिया का सुखदाई संतो आप व्यंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन

पहला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी उमन केर महा अत बिखरी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जप मलन पै जुतारी जिस ते लागे तिन्हें निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा धारी उधरे

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

धारो वाजे पंच सवक्त कर सवागे शब्द वाजे कला दुत कर तारिया पंच दूत तुद वस्ती ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जन कौ से नाम हर कह लागे कहो नाम कैस को हुआ तुत कर अनहद वाजे साची लिवे बिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया केस नो होर था नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा तिलक कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका सब सत्य सवारिया कह नानक यूं आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल।

द्वारा पाये तन मन तन सब सौंप गुरु को हुकुम मनिये पाये हुकुम मनियो गुरु के राजा वो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कछु अकथ कहानी के मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एक परम कुलाया माया का मोहनी तिने की जिन ठगोली पाया कुर्बान की ताक सहद तू जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया के मन प्यारिया तू सदा सत समाले।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने। जी जंग सब खेल तेरा क्या को आंख वखाने। आंखें ता वेखें सब तू है जिन जग तू पाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंग सब तुझ उपाय एक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार क्यों कर

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना।

कर्म कमाए सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोटा जाए मन तो वो शब्द लागो हर्ष रहो चित लाए कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले आप छद सदा रहे परने गुरु बिन और न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के बेमुख होवे।

अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ते सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एव हुआ समाओ शब्द खेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपसे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी सत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेरी गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिवला गए।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विच्चों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कीते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विकता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल हित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर सब जानी।

जग में आए चाहे क्या तुझ कर्म कमाया है, के कर्म कमाया तू शरीर आ जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो, सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे, आनंद अनहद बजे बाजे हर आप गल मेलावे। तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो, तुर लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुरु आन निवाया।

मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभु त्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिये।

राम रामा राम रमा कंठ उर्धारी है। उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम।

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मा

बेअंत पूरन सुख सहज दाता कवन रसना गुणपणा। आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब।

निवार हर हर पजो नानक प्रभ भरपूर। किलविक काटन पै हरण सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए। छंत

जियो बिनवंत नानक सिमर जीवान जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो।

भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रै रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया।

आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत

छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

अफरे उतलियो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई।

जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करनी गुरविचार अगम अगोचर।

सह सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत।

गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

दैद टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया। गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले। गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार। गुरमुख शब्द अमृत है।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय दे खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त।

गुण जम पुर जाए ना तिस एहो ना ओहो है अब गुण फिर पछता है ना तिस ज्ञान ना त्यान है ना तिस धर्म त्यान विणना में निरपो कहा क्या जाना अभिमान थाक रही किव अपना।

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे, ता निज कर वासा पाइए। पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा, आस निराशा तरिए, गुर पर

आए वन तृण टूडत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नान

अंत न पारावार। राड़े रूड़ा हर जियो सोई, तिस बिन राजा अवर न कोई। राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर वसे मन माहे, गुर प्रसादी हर पाये।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर।

विद्या सोदै तत लहे, राम नाम लिवलाए, मनमुख विद्या बिकरदा, बिख खटे बिख खाए, मूरख शब्द नाची नहीं, सूझ बूझ नह काए, पांदा गुरमुख आखी है।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदा रजाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले।

नावे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सच वापारो खंडत निद्रा अल्प आहारं नानक तत विचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारे अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुल चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी।

क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, एहो तत विचारे सो गुरु हमारा। दुर्मत बांदा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा। सतगुरु मिले अंधेरा जाए, नानक हो मैं मेट समाए।

हमारे। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, अनहत राते इहो मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर।

साज कमावे गत मित सब दे पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहीं है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सूजे।

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सत

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहस्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगार है, बोले बाणी नानक विचार है, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम आधारा, आपे पार उतारण हारा, गुर पर चय मन सा

माने दूजा जाए इकत कार्या ने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग मसुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित पोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अराध्या अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म

आत्म सुख तारी, सच अराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, इहो मन मैगल कहां बसियले, कहां बसे इहो पवना, कहां बसे सो शब्द औदू, ताको चूके मन का पवना, नदर करे ता सतगुर मिले, ता निज करवासा इहो मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणे आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इहो मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख पूख साचे की, साचे ही तृप्तात रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हू न जावे, जा इहो हिरदा दे न होती, तो मन कैठे रहता, ना भी कमल अस्तंभ न हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप न हो तो रेख न काई, ता शब्द कहा लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी

जौन गगन जब तबे ना हो तो त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण पेख अस्वरूप सो एको एको शब्द विडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरे दुख पाई गुरमुख होवे सो ज्ञान तत विचारे हो मैं शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्...

जोग कदे न होवे, देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजे बिरला बूजे कोए, गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणे, गुरमुख नानक एको जाने। बिन सतगुर सेवे जोग न होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई। बिन सतगुर पेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुर पेटे महा दुख पाए। बिन सतगुर पेटे महा गर्भ गुमार, नानक बिन गुरमुआ जन्महार। गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार। गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार। गुरमुख मेल मिला।

परम कुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याय अंतर रखिए उधार नानक कर।

कह न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानई, हो मैं छडे न कोए। गुर प्रसादी हो मैं छूटे, जीवन मुक्त सो होए।

पै का संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायुन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उप

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेश करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चा सब समाय पौड़ी। आप अलिपत पदार हैं होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल हैं होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

न कोए, सचो सच वखाणे कोए, नानक अगे पुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई, श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंक फिरे, ना सत मूंड मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे।

मिले वडाई जिस कट पीतर सब दरवे सब कट मेरे हो सबना अंदर जिसे खुआई तिस कौन कहे जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन जिसे फुलाई पंग सिर।

कबीर बोले ईश्वर सत स्वरूप परम संत मैं रेख न रूप मैला पहला सो अवधूती जो तू कह आप पिख्या भोजन करे संताप औहठ पट्टन में पीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख।

पाया सब आत्म राम सचाता, बाहर मूल न खोजी है कर्माए विदाता, मन मुखार मंदर की सार न जानने, तिन्नी जन्म गवाता, सब में एक वरदा।

पूजा जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। बजर कपाट ना खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुर शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच करती है सा सब किस सचो सच

जावे सगल विजोग पौड़ी। मन मुख मोह गुबार है, दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है, नित नीर विरोले। गुरमुख नाम ते आई है, मच तत कढोले, अंतर प्रगास कट चानना, हर लद्दा तोले। आपे परम पुलाइंदा, किसके न जाई श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंग न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

मत सिर आवे पार पौड़ी, सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्याइन से सच्चे जिन हर फर्क तम पल्ले, भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले, आपे मेल में

सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए। अब गुण वंजन गुण रवे हैं मन सुख वस है आए पौड़ी। आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन। एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध। राम कली की वार महला पंजवा।

सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु देहो दिखा ले, हूँ किस देवा मन अपना, नित हृदय रखा संभाल, इक सतगुरु बाहरा, एक जीवन संसार, जन नानक सतगुरु।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

पावे, अंदर मैल न उतरे हो मैं, फिर आवे जावे, नींद व्याप्या काम संतापया, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे ती ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ नगरी विच दो कदे, ता उगड़ आया लोहा, बहुतेरी थाई।

ना पौड़ी, जिस कैमस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद सब परम पौ पागा, आत्म जिता गुरमति आगम जत पागा, जिसे त्याया

तुद कर मान महता तेज अपना आप जार सर्व कला परपूर दिसहजत कता नानक दासन दास तुद आ गय बिनवता। श्लोक महला पंजवा छतरे बाजार सोहन विच व्यापारिये वखर हिक अपा

राम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पर...

जी मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम ना बोले पांडे दो जग परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर धरया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जलहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मून दया कर चोली, पत्र का करो विचार रे। चिंता इहो तन सियो अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, जब तब संयम गुरुमुख भोगी रहाओ। बुद्ध विपुल

रह निरालम तारी कहत कबीर सुनो रे संतो कर्म दया कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई।

जेहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

था। जब कुंभक पर पुरलीना कहे बाजे अनहद बीना, बक्ते बस शब्द सुनाया, सुनते सुन मन बसाया।

करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख, दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीहत हौं रे पाई, निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ, नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार, नालियेर फल से बर पाका मूरख मुग्ध गवार, हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कबीर कुल

वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो। शब्द अतीत

सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो, तीर्थ देख ना जल में पैसो, जीव जंत ना सतावोगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजै। अफबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित कीजै। आत्म जो निर्माइल कीजै आप बराबर कंचन दीजै। राम नाम सर तौ न पूजै मने न कीजै रोष।

सतगुर प्रसाद। इला पिंगुला और सुखमना तीन बसे एक थाई, बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई। संतो

तप एमस नाम हरे कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास धरे रहाओ हर हर नाम जपें आराधें सेवक पाल।

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम त्यावे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किलबिक पाप नाम हर काटे जीव खेत कृसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने।

पावै। जन नानक के प्रभु वद में नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रवधारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुण।

हम करें प्रभु सिमरण। तुम जल निध हर मान सरोवर, जो सेवे सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांचे।

सुन अकथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल युग विच उत्तम मत।

हर अकप कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

काल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर पग पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहा तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधार्यो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसार्यो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवार्यो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

जीत हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत हो है पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदियां महला।

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अत मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे अत पीके लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे गुरमत राम नाम तन

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिब चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस ना परस

तब किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देख ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काई ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट टूट

कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खेवारे जो जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृदय लुचे प्रभ जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वर्त है कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

सारे मिल सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन

सबद विचारे, निज पर जाए अमृत रस पिया, बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको, तुम मंद हम निकीरे, नाम के कृपा करो गुर मिलो, मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा, मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतित पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उधार्यो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता। रहाओ वड पागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर शरणाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तिल विच पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्रभु मस्तके तुरली किया गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया हर मिलियो मंगल गायो, पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिया जो लोन जलाये गलायो, मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो जन नानक नाम समायो, माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा, रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई हर उर्धार्यो वड पागा, मन मुख रंग कसुंब है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे दंड धर्म राय का लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूरी जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन क्यूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जानू हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन अनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीस की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी।

हवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार, जास जपत होवत उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुच

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

पास। जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तू ही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक।

ओर, नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत

हजूर, करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए।

तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आ

0: लोक
1: साजन तेरे चरण की होए रहा सद्दूर नानक शरण तुहारी यार देखूं सदा हजूर
0: शब्द
1: पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

दुख पर फुड़े पूरब लिखे माए, सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहिब सो सलाही है जिन कर देखिया खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते पोग, विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई, मिल माया सुरत गवाई।

ना कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसें जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

पछताने। तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

हवर पला संसार मारू महला पहला। एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तारे रहाओ। ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे।

तन बिन कहो किने परम गत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जाए मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीजे पंत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीजे मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पेखारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरुपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनिया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

जियो जिसनु साचा सिखती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हौ मैं जलिया मनो विसारे जमपुर वजे खड़क करारे अब कै कहे नाम न मिली तू सौ जीड़े पारी जियो माया ममता पवे ख्याली जमपुर फासेगा जम जाली हेत के बंधन तोड़ न साके ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुरु दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू मेला तीजा कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद जय बैसा ले तय बैसा स्वामी जय पे जय तय जावा सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देह बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा राव बुरा पला किछ आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे विनाशी ज्योतिष पाणा सो सतकर मान्या काटी जम की फांसी पंत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किच आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सारा जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछू ना जाए जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सा लाही है तिस जेवर अवर न कोए मेरे मन अनदिन त्याए हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अनदिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु देव।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गंगंदर बे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जप्या। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जप्या मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया। मारू मैला चौथा कर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर हर नाम निधान ले गुरमत हर पत पाए। हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए। जिथे अवकट गलिया पीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए। मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए। मेरा मात पिता सुख बंद पो मैं हर बिन अवर नमाए रहाओ। मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जम में आवे जाए। ओए जम दर बदे मारिये हर दरगे मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल ले ओ हर राए। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेलाए। मारू महला चौथा हों पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास। हों तिस विटो खन खनिए मैं मेले हर प्रभ पास। मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास।

या मित्रा मैं हर हर नाम तन रास गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूणिया तिख मोहिया कंदी पास गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी।

कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ। मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजाने जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजे गुरु शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रव राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर न जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हाँ अंदिन नाम लई करता रे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, दे तार अर देवा डर पे। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे, अत डर पे तरम राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो। जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहि दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया पगत प्रहलादे, हर नाखस नखे बिदारे। बिदरदासी सुत पयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कहन पराद बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की, लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्त न वित्त प्रमेय बहु पांते। अनक

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छो।

सहज आनंद रखियोगे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने हो। जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो कृपा।

पावन पतत किए खिन पीतर, मैं मां कथन न जाए, निरपो पए सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन सुलिवलाई, मारू मैला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, हुआ को फिर तावसरे, अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

बुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो।

उतारियो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहु नानक तत विचारियो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप, रहाओ, जाके वस है सगल संसार, आपे आप

तपत गुरु प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारियो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इआनथ तज सारंग तर परम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ। तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावत। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीस उठावन न कबहू मिले महादुत्र माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

छाया था। अनुपौ अचरज रूप प्रपेख्या, मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दशम द्वार वज्यो तें

भरत नाम चो आया था, तोट ना ही मन तृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

एकै सुख ने दाम न छड़े, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया। एकै प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया। होए अवतूत।

काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसे गीता के, साध संग पै जन मुक्ते, गत पाई नानक नगर नहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते देखा जात न को, मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए, चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उदारो, करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा, साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत केला जात केला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना

थान बिहून उठ उठ फिर पावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अंगमेव मूठो बेचारा अनेक दोख अर बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाई प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात न बंद न मीत न जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिगारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप से काडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह कावो।

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इस नाम त्याई, नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई। मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अकपा।

सत उदारन तारन बल बल बले बल जाय है। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय है। मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा, यह ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाए। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, नेचल तिनका ठाणा गुर ते मैल पछाणा, आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए, हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू मेला पंजवा कर छेवा दो पदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा, मिल साध त्याग गुमान, और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम, मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। राव दुख दीन ना पाओ व्यापे, मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू मेला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने, मेरे मन नाम नित नित लेहे, जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे बिनसत पवन चूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे। मारू मेला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिसीद, नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत, गुर मंत्र हृदय चितार, चरण शरण पज संग साधु, पव सागर उतरे पार, मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर्षो, अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार, गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कभु न हार। मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो, किसे प्राप्त

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे उरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खसम छड़ाए लया विच्चों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चितलाया आवे जाए

रूप प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो, गन काहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी तैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही प्रोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी करमानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहीं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो।

वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, हर सर तीरथ बहु कहा प्रम था के देखा, साचो साहिब निर्मलो मन माने एका, तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी, नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा, गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा, अठहठ तीरथ हर नाम है किल विस्का चनहारा, जल बिलो है जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति जद मत्थी है अमृत पाए नाम निदाना, मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना, हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार, गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार, गुरमति जग जीवन मन वसै।

पाए कार कमावणी नित तोता से सारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू टनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केव तू जल सागर सराल बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सो लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमती सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिय जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए। गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख। मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख। भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे। जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप। नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोची है तू दीपक तू तूप। गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे सा

आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कृष्णा मिटेगी हुक्म न बूझे पशुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर सबदना चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके न बोले खिमा तन संग्रे तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवाना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी।

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाये अफरयो पार अपार तरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे चित उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड कुटंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हों मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटे जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर सबदे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर कर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेरे फिर समला सौरले करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास लेप निहाली पटकी कापुर अंग बनाए फिर मुट्टी डोहागनी तिन दुखी रहन विहाए किती चखो साजड़े किती वेश करे ओ फिर बिन जोबन बाद गयम।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुति निसदे हो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

है एक जोत दो नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने मन।

जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचो दुरमत होवे। रंग सो नित रलिया माने, अपने कंत प्यारी जियो। सत गुर बाजो वैद न कोई, आपे आप निरंजन सोई। सत गुर मिले मरे मंदा होवे, ज्ञान विचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए, गुरमुख तृष्णा कुख गवाए। अपने लिया किछु न पाये, कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया, कर कृपा अपने कर आया। अंजन माहि निरंजन जाता, जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए, अपना आप विचों गवाए। सतगुर बाजो सब तंग कमावे, देखो मन विचारी जियो। एक परम पूले फिरे अंकारी, इकना गुरमुख हो मैं मारी। सच्चे शब्द रते बैरागी, और परम पुले गावारी जियो। गुरमुख जिन्नी नाम न पाया, मनमुख बिरसा जन्म गवाया। अगे बिन नामे को बेली नाही, बूझे गुर विचारी जियो। अमृत

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन सक

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापैखिन उतरो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत, ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्वजी समत, कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद, शीत मंद सुगंध चलियो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल न शंका मान, सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए, चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल, मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

का गुरुचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे, दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे, दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद्रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रखपत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगती संग सीवना, मात्या हर रस में राते, तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार, सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक।

बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हों बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हियालिए। संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे वो बालक वांगी पालिए। छोड़ बहे तो छूटे नाही, जो संचय तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औध विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वक्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे।

आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

प्रबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजै नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझे त्रिभुवन सूझे, मनसा मार मने क्यों लूझे। जो तुद सेवे से तुद ही जे है, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पौ जाए है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अड़सठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है।

सचनाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेते धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाने मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न दरगै सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सो जी बूझ न काई है। दया दुआ पर अद्दी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच सिखाई है। राजे धर्म करे परसाए आसा बंदे दान कराए राम नाम बिन मुक्त न होई खाके कर्म कमाई है। कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ शब्द सलाही बिन गुर शब्द मुक्त न होई परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई से छूटे सचकार कमाई एनस भगत रते विचारी ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे जो तुद पावे तिवे चलावे हठ निग्रह अब चीज ना पीजे बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी बिन गुर पूरे किन न पाखी मन मुख कूड़ वरते वरतारा बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा ना जमकान ना छंदा बंदा जो तिस सेवे सो अबनासी ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे गुरमुख कोट असंख उधारे सर्व जिया जग जीवन दाता निरपौ मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी आप निरंजन अलखा पारी नानक साच कह प्रभ जाते मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला साचे मेले शब्द मिलाए जात इस पाना सहज समाए त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख

फाचे की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगह पैदे, गुरमुख

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है। बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हठ कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे त्रिष्ट उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत ए बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी। इहो जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय त्याई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाहारा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं। दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पराई। पर पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो। आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरियाई। हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुरु शरण परो ता उबरो। क्यों तरिये पव जल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिख केला। तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग चतवारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूझे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवासा पाया, एक विसारे ता पिढ़हारे, अंदले नाम विसारा है, बालक मरे

काली हुफुन तौले आए विणनावे गत गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे बिन अब पगती बाद मरीजे सर अफसर की सार न जाने जम मारे क्या चारा है परवृत्ति नरवृत पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किस ही मंदा आँख न चले सच खरा सच यारा है साच बिना दृष्ट जय न कोई साच शब्द पैजे पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल समाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रस पाए जम जागात नाही कर लागे

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परा।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख न मिटे, जमदर अंध खुआ।

भूख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरियारा है मस्तक पार कलर फिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुरु तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतार।

कूकर सूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है।

नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलनहारा है मारू मेला पहला, कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतरगत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आ गए, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत् विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन लै चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है, बिन गुर साकत कहो को तरया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी।

बिखला दे चार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती। नानक राम नाम।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, घट घट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट फो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय

आला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला सात दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिव राता है अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा दिन में पंच तत् करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है इव मन पी जय शब्द पति जय बिन नावे क्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुह कर मंदर इन साकत दूत न जाता है दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले।

जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावे, जो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े इकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाज न बेली कोई, ऐथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, तिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की भगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन, ऐनक निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है, सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे, जिन तर चतर तरे विचारे, आपे करता कर कर

गिण गुरु पूरे तत न पाये, सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आखे, आपे दाना सच पराखे। जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ती बाणी, सुन कहिए को अंत न जाने। जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिस सर पर मरना, सिर्ट पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काती सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रात सलामत यूका जम का फाहा है। सब को बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने अंधले की मत अंधली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने सिफ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो, तू सिर साहा पातशाह है, मारू मैला पहला दखनी, ताया नगर नगर गर अंदर, साचा वासा पुर गगन अंदर, अस्थिर थान सदा निर्माइल, आपे आप उपाएंदा, अंदर कोट छजे हट नाले, आपे ले वे वस समाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर सब्जी खोलाएंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ कर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएंदा, पौन पानी अग्नि इक वासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निवरे कृपा ते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी धर्मशाला, उत्पत पर लो आप निराला, पौने खेल किया सब खाई, कला किंच टहाएंदा, पार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दो दीपक राखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल चिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकत्ती कथो चेन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद रुण चुनकार सदा सुन, निरपौ के करवाएंदा, अनहद वाजे परम पौ पाजे, सगल व्याप रहा प्रभ छाजे, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसो है गुण गाएंदा, आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार वसे मन पावे।

सीधा कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे वे प्रवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखे आप बैठ बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाएगा मारू महला पहला दर्शन पावा।

जति सती के ते बनवासी अंत न कोई पाएदा ऋण जानाए कोई न जाने जो किस करे सो आपन पाने लख चौरासी जी उपाय पाने सह लवाएदा जो तिस पावे सो नेचो होवे मनमुख आप गनाए रोवे नामो पुल्ला ठौर न पाए आए जाए दुख पाएदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवे बहुर दुख न पाएदा बहु साधो दुख प्राप्त होवे ओगो रोग सो अंत विगोवे हरखो सोग न मिटई कभू बिन पाने परमाएदा ज्ञान विहूनी पवे सभाई साचा रव रहा लिव लाई निरपौ शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएदा अटल अडोल अतोल मुरारे खिन में चाहे फिर उसारे रूप न रेखिया मित नहीं कीमत शब्द पेद पति आएदा हम दासन के दास प्यारे साधक साच पले विचारे मन्ने नाओ सोई जिन जासी आपके साथ बिड़ाएंदा पल्ले साच सचे सचियारा साचे पावे शब्द प्यारा त्रिभवन साच कला तर थापी साचे ही पति आएंदा वड्डा वड्डा आखे सब कोई गुरु बिन सो जी किने न होई साच मिले सो साचे पाए ना विचर दुख पाएंदा गुरु विचुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन में मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड्याई मेल न पछोताएंदा आपे करता आपे पुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति।

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओपत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुर्ग मच पयाला, दोजक पेत नहीं खै काला, नरक सुर्ग नहीं।

हर पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाश कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएगा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिशे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएगा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान प्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्र...

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पताल अरंबे गुप्तों प्रग

नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पै गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे दसवें वासा अलख अपारे सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंगा रब सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वड्याई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंगा गर्म है हाट पटनवा पा

से पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का वापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा, हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा, हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संजम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो जोत तुम्हारी, सुनने कला रहाएदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा, सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुर जोन न पाएदा, सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा, सुनो तरत आकाश उपाए, जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते, विस्माद शब्द देखाएदा, सुनो रात दिन सुदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा, सामवेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा, सुनो सप्त पताल उपाए, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा, राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएंदा, सुनो उपजे

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएंदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया। त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक द्रासा। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत,

तन दी पाया पंच तत् मिल ए तन किया आत्म राम पाए सुख किया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रहे निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जंग

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजान।

जय महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया, नामन चले न पौन उदावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनका।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोट सबाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसैने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, कुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत्संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे,

देख अदित रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दी जय, हर जपिए।

कुमार है गगनंतर तन सिराया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुरु जाने सो निरपौ गुरु शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वस्या एनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिहु लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखा दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्त ताक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम से आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा संत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नजर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गै जस गाया सतगुरु मिले ता महल बुलाए साची दर गै गत पत पाए साकत ठोर नाही हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुरु समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा दिखिया मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसार दुख बिना सन सेवो फिर बहुड़ रोग न लाया साचे पावे तिस वडियाए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्त है नानक हर गुर पाया वाचे है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजगर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड कीने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत ने

नानक आत्म राम सबाया। गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाए, कर कर वेखे अपनी वड्याई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले दे वड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत पुरे बिललांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार पगती।

मते बन आई है, दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है, आपे गुरुमुख आपे देव है, सच्चे शब्द सतगुरु सेवे, जरा जम तिस जोहे न साके, साचे से मन आई है, कृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेवन सेवन पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हों मैं विच्चों जाई है, गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है, आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

मिल प्रीतम सुख होई है, मन मुक्तात दूजे है लागा, जन्मत की नाम वो अपागा, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है, काया कुसुद हो मैं मल लाई, जे सो तो मैं ता मैल न जाई, सबर तो पे ता अच्छी हो वै, फिर मैली मूल ना होई है, पंच दूत काया संगार है, मर मर जम में शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है, एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलियावड पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है, गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रस चाखे सच सोई है, हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उर्धारे, एक बिन हो होर ना जाना, सहजे होए सो होई है, बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हम मैं शब्दे खोई है, आपे गुण

साचे ते पत होई हे। मारू मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मनमुख निंदक पत

वह पाए सुभाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए है, परखा के साथ न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुके जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे

का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है और गणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुर बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुरु सेवा ते सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नह पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता इक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जित तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वह सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हो तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अमदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशि है हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा सतम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे ना करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बस ले सुख पाए सभी नाम निवासी है तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वन जब अपारा सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बस ले नाम दी जय गुरमुख हो वै सो पत पाए इकत नाम निवासी है अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख हो वै सो तन पाए सभी नाम निवासी है अनलवाओ परम पुलाई माया मोह शुद्ध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न समाले अंत विगूते पर निंदा करे बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव बुझाई नानक नाम रते

मन मुख ना बूझे फिर आणी जमकाल कड़ी मोत निहाले अंधिन आरजा छीजे अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जमकाल।

दुआ श्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जय है। गुर के शब्द सदा जन सो है नाम रसायन एव मनमो है। माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय है। सब नाम विच वरते एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। हूँ मैं मार सदा सुख पाया नाए पाके अमृत पी जय है। किल विख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किश आपे आप वरते गुरमुख तन मन पी जय है। माया अगन जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे। अंतर सांप सदा सुख पाया गुरमती नाम ली जय है। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे। सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जय है। मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत सांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जय है। ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूझे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, न अंतर पीजे न शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ता

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखा निवारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख हो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवे सच त्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अन दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया, गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

जा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहु चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण ना ही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तोले तोल ज्यो पावे त्यों राखे रहना गुरमुख एक को जाता है जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक सुने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया कमल है कुमलाना मन मुख शब्द ना

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी खाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आई है सदा सद।

जाए इतना गुरुमुख शब्द पछाता है। पूरे सतगुरु बूझ बुझाई बिन नामे मुक्त किने ना पाई। नामे नाम मिले वड्याई सहज रह रंग राता है। काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साज सलाहे साज समावे जिन गुरुमुख एक को

दर साचे साच पछाता है मारू सो लेती जा। आपे करता सब जिस करना जी जंग सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द विचारा। जो तुद भावे सोई करसे सच्चे सो मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञानमती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तन कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेक सारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभ निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्षे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हो मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, हो सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर

अगम असहा है आपे सच्चा सत वरताए एक जन सच है आपे लाए साचो सेवै साच कमावे नामे सत समाहा है तुर पगता मेले आप मिलाए सच्ची पगती आपे लाए साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्मे का लाहा है गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे एक बिन को अवर न जाने सच्चा साओ सच्चे वन जारे पूंजी नाम विसाहा है आपे साजे श्रिष्ट उपाय विरले को गुर शब्द बुझाए सतगुर सेवे से जन साचे काटे जम का फाहा है पन्ने करे सवारे साजे माया मोह दूजे जंत पाजे मन मुख सिरे सदा अंध कमावे जम का जेवड़ा गल फाहा है आपे बख्शे गुर सेवा लाए गुरमती नाम मन वसाए अंदर नाम त्याए साचा इस जग में नामो लाहा है आपे सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवे मन वसाए जिन मन वस्या से जन सो है तिन सिर चूका कहा है अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाए सदा शब्द सलाही गुण दाता लेखा कोई न मंगैता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र किसकी सेवा अंत न पावे अलख वेवा जिनको नजर करे तू अपनी गुरमुख अलख लखाहा है पूरे सतगुर सोजी पाई एको नाम मन वसाई नाम जपी तै नाम त्याई महल पाए गुण गाहा है सेवक सेवे मन हुक्म अपारा मन मुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई हुक्मे वे परवाहा है गुर प्रसादी हुक्म पछाने तावत राखे इक

सबत सला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा पगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नजर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्दे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हों मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहाहे। अफ्रियो जम मारिया न जाई गुर के शब्दे नेर न आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा

खोजे शब्द सलाहे बाहर काहे जाहा है, ऋण चाखे साध किसे न आया, गुर कै शब्द अमृत आया, अमृत अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती।

गुरु का शब्द अमृत है वाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया तो कर्म कमाए, दिख्या राते दिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुरु कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

पूरे गुर ते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक सियायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सा

हौ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन सह नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

गुरुमुख सच्चो सत्य वखाणे, गुरुमुख सच्चे वै सच्चो सच्चा, गुरुमुख सबद सुनाएदा, गुरुमुख हो वै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुरु की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरुमुख हो वै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए, अपने पाने सदा रंग रा

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

मैला मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपे काप उठाप निवाजी आपे न्याय करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकार।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवै से तुझै समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत।

कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा अपना आप पछाने।

ही मत देह सो होवे, तू आपे शब्द बुझाएगा। आन दिन आर जा छिजदी जाए, रैन दिन दोए साखी आए। मन मुख अंध ना के तै मूड़ा, सिर ऊपर काल रुआएगा। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर परम गया पौ पागा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएगा। जिंतु जाता कर्म विधाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता। जात पात सच सच

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती विस्तारित वासा, विस्तारित कृपाएं दा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिमें चलाएंदा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएंदा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेख है, गुरमुख आप बुझाएंदा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा, आप निराल मोहर संदे लोई, गुर प्रसादी।

जुग छत्ति कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा। होर क्या को कह के आख बखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे स्यो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा।

सहसा मूल न चुके विकारा गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए सच्चे सच समाए दा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संजम नाम प्यारा किलविख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल होआ सहजे सह समाएंदा अंतर लोभ मन मैले मल लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड़ करे वा पारा कूड़ बोल दुख पाएंदा निर्मल बाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप उपाए खपाए सोई गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे मिल साचे सुख पाएंदा अनेक जतन करे इंद्री वसना होई काम क्रोध जले सब कोई सतगुरु

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किस करे सो नहचो होई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दा

को पाएगा। सतगुरु सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुरु ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, अंदिन मारिये दुख सबाया, मत्थे काले महल न पावे, दुख ही विच दुख पाएगा। सतगुरु सेवे सेवड़ पागी,

जय कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएंदा हों मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले जो तिल कहानी पीड़ाएंदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही ते रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कह सब सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा।

सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिलाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त संभाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

इस बाणी ते हर नाम पाएगा, वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा, गुरमुख एक स्यो लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए, साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा, जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते, सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा, माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए, सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएगा, इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए, पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा, मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बंत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सह

गुरमुख साला है सुखदाते मन मेले कीमत पाएदा काया विच वस्त कीमत नहीं पाई गुरमुख आपे दे वड्याई जिस दा हट सोई वत जाने गुरमुख दे ना पछोताएदा हर जियो सब में रहा समाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मिलाए आपे सब दे सहज समाएदा आपे सच्चा शब्द मिलाए सब दे विच्चों परम चुकाए नानक नाम मिले वड्याई नामे ही सुख पाएंदा मारू महला तीजा अगम अगोचर वे परवाहे आपे मेहरवान अगम अथाहे अपड़ कोई न सकै तिसनो गुर शब्दी मेल आया तुदनो सेवै जो तुद पावै गुर कै शब्दे सच समावै आन दिन गुण रवै दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मरे से मरण सवारे हर के गुण हृदय उतारे जन्म सफल हर चरणी लागे दूजा पाव चुकाया हर जियो मेले आप मिलाए गुर

कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा।

मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे सो चित लाया। हऊ मैं विच सब जलै शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए।

हारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगै गुर

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिसे सिरे वो प्राणी है, जा को राखे हर राखन हारा, ताको कोई न साक्ष मार।

जन नानक नाम जपो पव खंडन सुख सहजे रहन विहानी है। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परे तिसकी पत राखे।

जय पह करते हर अंदिन नाम वखानी है। किसी जोर अंकार बोलन का किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निमानी है। निमाने मा

हर हर नाम जिन्हि सदा ते आया, तिन्हि गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। जन नानक दास।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा।

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थानंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे करताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसे त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार से

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै इकत्रा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने पिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसें।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म तर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेम बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मेरा कट कट पूरन सिर सिरैन मेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरखवंत अनंत दयाला प्रगट रहो प्रभु।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे।

आवे हर सो किछ करे जे हर के आसन ता भावे कीता लोड़न सोई कराएन दर फेर ना कोई पाएंदा जिथे औकट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याये सारंग पानी जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमाथाहा क्यों मिलिए प्रभु परवाहा काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, तामिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरम्पर सतगुर जिस सिमरत मन

संतन की शरण आई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोय सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सत

जिथे दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पस पंखी सब पूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन।

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन साध।

प्रभ समरथ सर्व सुखदाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्षंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

वे पाड़ा। एक बैसाए रखे गृह अंतर, एक पठाए देश दिशंतर, एक ही को कास एक ही को राजा, इनमें कही है क्या कूड़ा। कवन सो मुक्ति कवन सो नरका।

अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसे कहने बेड़ा तिसे शरीक नाही रे कोई किसी बुते जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखे चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत।

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो।

तुदलेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

जित फिर ना मरा। कुरान कतेब दिल माए कमाही, दस औरात रखो बदराही। पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा। मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा। हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी। सो मौला मलऊन निवारे।

सिमरत नाम अन दिन जागे अनद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न ताल का रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाए।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरै नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मैला पंजवा, इको अंकार, सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित भारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बौर न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिर्त कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे न लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जय आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जय। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय। गुरु शब्दी कमल।

मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया लेओ, दरगे लेखा मंगिए किस किस उत्तर देओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोए।

सच दृढ़ा ए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वडियाई दे सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे अत क्रोध स्यों लूज दे अग्गे पिछे दुख पावे हर जियो अंकार।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडियाईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे, सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला, हुक्म

पास इश्क मोहब्बत नान का लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे ठिन में मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुद है लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लागणो।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाये, जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए, जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए। मन मुख जगत निरतन है, माया नो बिलाए, अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए। सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए, सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए। नानक विन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रह सच्चे माए समाए, मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे न होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मन्ने सुख पाई है गुर सब जीवी चार पौड़ी। अंदर राजा

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग नाम होए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सब दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जचा जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी।

पापे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवां कुरिये कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवां सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यों जुम्यो। महला पंजवां पोरे पोरे रू

कुल तारा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने महला पंजवा आगाहू कु त्रांग पिछा फेर न मोडड़ा नानक सिज इवे हावार बहुड़ न होवी जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित हबे जानन अपना कही न ठाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल।

जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै, जो नर उसकी सरणी पर तिस कम्बै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै, जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जानै आपै, ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो न पाईए, बिन सतगुर मनवा न लगे। धर्म धीरा कल अंधरे, यो पापी मूल न तगे। अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान चंद्र नगरी सुख घटाऊ डोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख लेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुत न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न देखं तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवे जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवार आया अपना जिन गुरु अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दरगह मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देखना पाई है प्रभु अंतर जामी एक सहर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यों नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी बिचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुर पाया हर मिले आ स्वामी जो जन हर का सेव को हर किसकी कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यो महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हे कुड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा मतड़ी कांड कुआ पाव धुवंदो पीवसा मूतन प्रेम वथा पसन को सच्चा धनी पौड़ी निर्भव नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाय भवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार पूरी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेग धुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखने महला पंजवा परबाते प्रव नाम जप गुर के चरण ध्याए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा।

गरीब मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाए का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अब।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा स्लोक डखने महला पंजवा जो दुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निड़ो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाओ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सह क्या

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सु धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछड़ा ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुरु जान दिया समझाए, अंतर्गत हर

राम उदक दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

तो मुगद कहा जो कैसी कर प्रसाद मोह पाई है राव। तारन तरन तवे लग गई है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल पय घटी मैं कह कभी मन मानिया। जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन, जब जम आए के पकड़े।

मुकत चारे सिद्ध मिलकै दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भविकन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदामे धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरियो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आपस को दी

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभु न सिमरो राम। कह कबीर से तय नहीं मूर्ख मुग्ध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मान्या। रहा अर्ज को अर्दया, सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की गय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गय पटके ता दिन कृष्ण बस।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नवनिद कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार।

रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बाणिया साधन सब रस चोले अंक समानिया हर अंक समानी जा प्रभानी सा सोहा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने घड़ी ना बिसरे। क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए हर स्यों प्रीत बनी। हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे नानक वरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे।

सुख मैले नानक जेठ जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहले। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सुख है अगन पक्ष है अगन रस सुख है मरिय सुख है भी सो किरत नहारे रस फिर छाया धन ताते की।

सावन सर्प मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादो परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रब तै ही जाई है, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मिले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज।

जलाया दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ माँ है सरसी अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामर सी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति ते आगे भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रसुख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी अंडज वीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो पीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा गंग जमुन तह बेणी संगम सात समुद्र समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस बया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो मैं लीला न खाओ हार डोर रस पाठ पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मूर्त पर

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया अहमित देख बिचारिया दावत पंच रहे घर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुग परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रहा अवर न दिया राम रव रहा सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो कब गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिबद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़े घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वै नानक मीरा ही रह बेदया गुण कह हा करो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सजगर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अव

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन्ने उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हाँ सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रियो प्रियो सत्य नित चवा राम। प्रियो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विटो।

कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कार्य राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तार्य राम। हम मूड मुग्ध किछ मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले, हम निर्गुणी निमानिया। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया, क्यों साथ गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीस टेक दियो, जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से, जिन मन चित एक अरा दिया, तिनका जन्म सफल हो सब किया, करते जिन गुरु बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे, जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कह तुर लेख माथ। जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप एक निमक सब लाथे, जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपिया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले, हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान तनंतर हर एको एक रव्या, वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एक को एक रव्या।
तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करें तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाथ गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर वटवारे तिनका छाओ थे ओ गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करें ता पीवा आस प्यासी पिरके ताई जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे तू साचा साहिब साओ अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता प्राण सुख दाता गुरुमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी।

ले कपट तपट बुज तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मन मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात खिदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जी।

होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत, आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुख मली, गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली। राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली, प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली। जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली, प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे, कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे, रेन जन की लगी मस्तक अनेक तीरथ सुचे। चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय, शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

उस्तत निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन समकर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। राव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार।

राम ना जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल ना दूरे, अनक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या तो करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंक की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकार जाए। राग किदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे इको।

तुझते बाहर किछु ना होए, तू कर कर देखे जाने सोए, क्या कही है किछ कही ना जाए, जो किछ है सब तेरी रजाए रहाओ, जो किछ करना

विडानी करे कराए जाने आप नानक देखै थाप उथाप इको अंकार सतगुर प्रसाद राग पैरो महला पहला कर दूजा गुर के शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे पल जल बिन शब्द क्यों तरिए नाम बिना जग रोग व्यापे।

समाई मन जोगी मन बिनस देओगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे हुए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रब जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंदे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंदुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंदलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ से कृतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंदले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लहै

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

खिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुरु कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा, मैं कामन मेरा कंट करतार, गिहा कराए तेहा करी सिगार।

सिमरत शास्त्र पणे मुन केते बिन शब्द सुरत न पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काड लय प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए।

जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको ना ओ मरे न जाया। पैरों में लाती जा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

सतगुर टोटे ता फल पाए, सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार इनकी रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया।

शब्द बिचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाई। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ताते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाई, आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाई, मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने, जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ हम दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया, दाता से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप निक्षया थम उपार, हर नाथ से नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने

कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सब ना माहे तुझ तो बाहर कोई ना है। हर सुख दाता मेरे मन जाप।

कोई जिसको तुम हर राख्या भावे किसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पैरों मेला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक पाग होवे जिस लिखिया

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों मेला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत हुए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी।

चौथा सत्संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्री वैनित चरने जग जीवन हर त्याए तरने अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इक गणने रहाओ गुर सिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कणे तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास गिरास आया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच पगता हर तरणे नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवने पैरो महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास दार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम पूले नर करक कचरायण जन्म मरण के रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म ना मरे रे साकत टोर सगल पराग देहे लोरो नी सो मुख जलो।

तू काया, खत शास्त्र मूर्खे सुनाया, जैसे दैदिस पवन चुलाया, दिन कण खलहान जैसे दान पाया, क्यों साकत ते को

हलत पलत जांची सच्चाम रहाओ। तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे। कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागति आए। पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आ

आओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पै ने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप समायन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता।

गुरमत है मैली बिन गुर पर जल फेरा होम जग जप तप सब संगम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड तार जट तार पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए।

पहला पंजवां निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंक निकट डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु।

गर्भ हिरे मिथ्या कर खाए पई ठगोरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड अंतर

जन नानक अपना साचे कोय पैरो मैला पंजवा। तो करिए जे होवे बाहर तो करिए जे विसरे नर हर तो करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

तौ करिए जे किछ होए सिंघाणे, तौ करिए जे फूल रंजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभु ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहा समाए, राखो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कैसो निरतकारी।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

बासन रोग पवर बिनसानो, एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, कहरो महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण को टूठा, मन तन शीतल मन अमृत उठा, पार ब्रह्म गुरु कहे दयाला, नानक दास देख कहे निहाला, पैरों महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबका दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पास सुलागा सेव रहाओ, सतगुर मेरा सर्व प्रतपाले, सतगुर मेरा मार जीवाले, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सब नी खाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर कहो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया, जिन गुर सेविया तिस पौ ना ब्यापे, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापे, नानक सो दे सुमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही पेद, पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पाया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल कुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेश तप ज्ञान रहाओ, नाम लैत

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोक पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होय आनंद न व्याप।

आधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोह दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

जपना कहो नानक जो जन प्रभु पाए ताकी रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजवा चितवत पाप नालक आवे बेसुआ भजत किसने शरमावे सारो दिन मजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, तेरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुरु कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम धान पैरो महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विलास, हौं बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ। जा के कर्तव्य लखे न जाए, जा का परवासा सब कट माए।

पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्त करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिखला का सब

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार सो

मूड मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान सत ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किचू ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभ कृपा करे जिस ऊपर के काल पर हरे सदा सखाए हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित न आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतिपा

ता कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम तिराए हर हर

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर गास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मन

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन्ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किस चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जां कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मनया।

सुच हर माने, अंतर मेला बाहर नित तोवे, साची दरगे अपनी पत खोवे, माया कारण करे उपाओ, कभे न

बोल पछताने, हाथ पछोरे सिर तरन लगा है, निंदक को दही छोड़े ना है, हर का दास किच बुरा न मांगे, निंदक को लागे दुख सांगे, बगले ज्यो रहा पंख पसार, मुखते बोलिया ता कड़िया विचार, अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सुने चल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार, पैरों महला पंजवा।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुतरंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

हर प्रभ आप मिलाए। गुरु की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुरु के शब्द विचारे। नानक तिन कै सद

आया, कहो नानक तत्तै तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

தர்த்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पतियाना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत

पहचाना उलट जात कुल दो विसारी सुन सहज मैं बुनत हमारी हमरा चगरा रहा न को पंडित मुला छाडे दो रहाओ बुन बुन आ...

क्यों लीजे गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

अद्भुत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

राव। हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, मूलों पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे, राम नामा जप वो करे।

जो गुरुदेव तसीस आकाश, जो गुरुदेव सदा साबास, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जो गुरुदेव

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हौ मैं सुरत विसार, हौ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किछ सांझी।

ओंकारे गुरु राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

दूर गुर के शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुरु प्रसादी सब समाल दर्शा चे पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक होवे खै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन

मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार। ए मन हरिया सहज सुभाए, सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ। आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर। छावकणी फूली बन राय, गुरमुख बिगसै सहज सुभाए। अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात। परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद। आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर होग। वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए। बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे। एक पोचे तै फिर जोन नावे, सफल जन्म इस जग में आया। सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए। हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ। तिस जन की है साची बाणी, गुर कै शब्द जग माए समाणी। चहु जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट होए।

लै पाए सो बुझाए जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसै।

न होए बहु अभिमान अपनी पख होए सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया बार जांदा कर मैं आणिया कर मैं वक्त अगम अपारा गुरमत खोजे शब्द विचारा नाम नाम निध पा

ए मन छूटा गुरु लिया छाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए ए जी जंत फूले हर चितलाए इन विद ए मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कदे तोए रहाओ सतगुर पाणी शब्द सुनाए ए जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगे ता सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वाड़ी नानक पूरे पाग भगत निराले।

तूर्तिना की अकुलिय पाई, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मेला चौथा हर पहला इक्के इको अंकार सतगुरु प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, ज्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सब दी मिलिए मेरी माए, रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिए एक प्रगट होए, एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर, एको एक वरते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए।

मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया। गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भक्त जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी। बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले ता खोजी है मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे। पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उभरिया, पाखंड परम उपाव कर थाके। हृदय अंतर माया।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विख मल परया।

हम कीए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हो मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, बुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है, गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाई है रहाओ, कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह ना सकाई है, जो ओडा कूप गोज खिन काड़े, जो सतगुर वस्त लहाई है, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ कुन फल पाया, कौडी बदले जाई है, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाई है, बसंत निंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकरे काल सलुंज, गोविंद जीओ बिखो में ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज, राव सत संगत साथ दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज, हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तार ओरे।

किसे प्राप्त एहो निधान, नानक गुर जिस करे दान। बसंत महला पंजवा, इस बसंत जिस प्रभ कृपाल, इस बसंत जिस गुरु दयाल। मंगल तिसके जिस एक काम, इस सद बसंत जिस

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श देख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण इक गुण ना जान, हाँ कछु न जानो तेरी सार,

तरह टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक।

देखने लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए ए पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख प्र

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवे बिन सत गुरु दी सै बिल लांती। सापत फिर आवे जावे रहाओ।

तब कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल पर गास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले टिक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, कर्म तर्म तुम चौपड़ साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोजी को ऐसी खेल हर प्यारी। उठ इस नाम करो प्रभाते, सोए हर आरादे। बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुरु, सुख सहज से ती कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया।

है भाणा कहो नानक कह तया दुआरे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभु।

क्या जानो, या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की, देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले, ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

आओ एहो जग तूए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन धारा संपत गृह कछ संग ना चाले समझ ले एक पवित्र नारायण।

प्रेम आधार गुरु शब्दी बिक प्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए अत लुभद लुभानो विकम माए नह अस्थिर दिसे एक भाए ज्यों मीन कुंडलिया कं

मन चले न जाए ठाक राख, बिन हर रस राते पतना साख, तू आपे सुरता आप राख, पर कारण देखे जाने आप, आप फुलाए

दुख सहना भाव नानक हूँ मैं शब्द जलाया सतगुरु साचा दर्श दिखाया बसंत महला पहला चंचल चीत न पावे पारा आवत जात न लागे बारा दुख कणो मरिए कर तारा बिन प्रीतम को करे न सारा सब उत्तम किस आखो ही ना हर पगती सच नाम पतीना रहाओ औखद कर था।

रोग व्यापे, कट कट रव रहा प्रभ जापे, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता, नानक राम रवे हित चीता, बसंत महला पहला, हित तुकिया मत पसम अंधूर।

गुरु नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाकर ठाकुर भाणे, बख्श लिए नाही जमकाने, जिनके हृदय एको भाया, आपे मेले परम चुकाया, बे मोहताज बे अंक अपारा, सच पति जय करने हारा, नानक पूले गुर समझावे, एक दिखावे साच टिकावे, बसंत महला पहला, आपे पौरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल, ऐसी

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

वे चौहस दिए एका एका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी करती देग मिले इक वेरा पाव तेरा भंडारी नासा बूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआ।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई।

आपे जल अपवंतर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार, बाल्मी कह हुआ साध संग, त्रू को मिलिया हर निसंग, तेरिया संता जांचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन। रहाओ गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर छीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन से व्या

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहाओ।

राजा कब मंगन हार, दुख सुख बाधो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

तू करता तू करणहार, तू ऊंचा तू बहु अपार, कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई, पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ। दिन रैन नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव है कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जाने पाच बर्द पची सक संग काच नौ बैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी ताहे मोहे ऐसे बनज सो नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बदे।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय दिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर दू।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

मिथिला सहज अवल तूर मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हाँकती जैसे पनकत त्रुटत हाँकती सर कोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो इको ओंकार। सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू।

मन मुखहीन होची मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जब की राम रंगी लहराती, राम जपत मन

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूलत, पुरख निरंजन देखिया।

हम दिन भगत करें गुर आगे, गुर के शब्द सवारे, हृदय नाम अमृत रस रसना, रस गावे रस बिचारे, गुर प्रसाद अमृत।

सांस वसै मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पै हर जाया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार संत जना के संग।

हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादिक तव गुण स्वामी जनन न जात तू हर बेअंग

ہر کے نکت نکت ہر نکت ہی بستے تے ہر کے جن سادو ہر پگات تے ہر کے جن

पंच शब्द वद पाग मथोरा। तीन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर अराधु, हर के जन साधु हर राम बोल, हर राम बोल सब पाप गवा दू। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीशोरा। मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख, जन नानक हर सो मिले।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ। वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करहें सोम पाक हिरें

निष्बासुर प्रिय प्रिय मुख तेरो, नींद पलक नहीं जागियो, हार कजर बस्तर अनक सिगार रे, बिन फिर समय दिख लागियो।

मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत सादा बचन गुरु जो पूरे कहो मैं छीक गांठरी बांदा रहाओ निस्बासुर नक्षत्र विनाशी रव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा।

पाए। जो जो शरण पर्यो करुणा निध ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

है गोविंद ना पजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यो हारे रहाओ नाम अमोला प्रीत ना किस्यो पर निंदा हितकार है छापर बांध सवार है त्रिण को द्वार है पावक जा रहे।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेका किस

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, हम दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दी।

और ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल दिनाशे जो आवे हर संत सरन। आप जपे अवरे

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

मानस जन्म गुलवाए गर्भ जोन छोड़ जो निक्सो तौ लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहाँ लुभाये आन कहो, ईत ऊत प्रवसदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए।

मोहन का आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई कौ नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा, अब क्या सोचो सो

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर से का गुर दयाल पै सुखदाई।

जो अल कमलालो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर सो मन माना साध कृपाल दयाल पहे है यो छेदियो दुष्ट बिगाना रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अज्ञान प्यान इतने मत ना कीमत।

मेरे मन शीत आये प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुन।

हर भगत भंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पर अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ठ लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय समा

गुर लाही सगल तिथा सारंग महला पंजवा गुर मिल ऐसे प्रभु ते आया कयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताकी बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते जेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल को बल बल गुर दर्शाया कहो नानक काहू परवाह जो सुख सागर में पाया सारंग महला पंजवा मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा खुलियो कर्म पयो।

सगल कूफ मेरी लाते रहाओ। कृपा निधान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाते, एक आस मुझ तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराते। नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तारे मेरे माथे। सहु नानक मैं

कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेट दृष्टाना, जो कहो मुखों सेवक एह बैसी है, सुख नानक अंक।

न्यायी, जैसे मात पिताए तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

भक्ति की जय। सुखदाता प्रभु ध्यान ये रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाये।

और खुद मुखदीनो जाए पया गुर पैरे कमन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर है सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखदाता।

अनेक काज अनेक तावरता पुरजो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी पूहा नाही जह भारी तिनस्यों राज मात हित लायो।

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेव

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम।

गुरु कै बचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा परताप रहाओ गुरु उपदेश साध की संगत बिन फ्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

आशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया।

समाये अनद अनद गुण गाया। बां पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप से माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सिउ लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कच करनी यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

अच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल से मानुष करया।

एक पसारा साध नाम बैठावो नानक पव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवे राम शरण वड पागी एक बिन किछ होर न जाने और उपाव त्यागी रहाओ मन बच कर्म अरादे हर हर साध संग सुख पाया अनद विनोद अकथ कथा रस साचे सहज समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरिय जोरा ते प्रभ

कहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ, साध संगत हो है निर्मल बहुर जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा।

चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाम रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिए हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या देखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जा के रास सर्व सुख स्वामी, आन न मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो, पूरन अर्थ विशेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम।

कोई चतुर सियाना पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पै

होए एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाहे। पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछु लाहे। चरण कमल नानक मन भेद्यो, चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए। करो कृपा गोपाल बीठले बिसर ना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए। जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

अनेक जोन प्रमीन गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

अपना प्रभु त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बौड़ जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद, पया साधु संग, हर चरण राम।

मानो द्वितीया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के कुह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हू राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

जोर, नानक शरण कृपा निज सागर, बिनस्यो आन निहोर, सारंग महला पंजवा, नीकी राम की तुन सोए, चरण कमल अनूप स्वामी, जपत साधु होए, रहाओ चितवता गोपाल दर्शन, कलमला कट धोए, जन्म मरण विकार अंकुर।

गुप्त होए रहो न्यारो मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते। राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी। रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

एक शरण गोविंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाम रूप साध संग, नानक पार ग्रामी, सारंग महला पंजवा, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचाते एक छूटा, जो साध संग पग रहो रहाओ, दृष्टो कछ संग ना जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निधान, सगल आस पूरी, नानक मन आनंद भये, गुर बिखम गार तोरी, सारंग महला पंजवा।

तास्यो न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहां नर अपनो जन्म गवावे।

ऐ सुन सजनी दूत मोए बिखाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन भाई सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों जीवा हर गुण गाई गुर के शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोइलिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रसरते अधिकाई, एक तस्बिन में अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर सा चामन भाया हर बिन अवर न

आई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरुमुख मन वसाई एक समय सब जग तो वरते विरला एक पछाणे शब्द मरे ता सब किछ सूजे अंधन एक को जाने जिसनो नजर करे सोई जन बूझे होर कहना कठिन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरुमुख विरले जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करे पाए दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नाम है सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग

अगम अगाद सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान

सो घरक दोहू मैं नाहे, अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करें, अनक महेश बैस त्यान करें।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

छिए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाई है गुरु प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मियो वरे सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समाणी नानक निगुरिया।

जो उस इच्छे सो फल पाए। ता नानक कहिए मूरत पौड़ी, सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया, सतगुर के पाणे जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया, नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला, सच वर्त संतोष।

द्वादशी पंचवश गत्तर राखे तो नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे और बहुत सिख त्यागी जय पौड़ी। कूपत राजे रंग राय संचय दिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्भ चुराया। पुत्र कलत्र न विश्वे बहु प्रीत लगाया देख दिया ही माया तो गई पछताए पछताया जम दर बदे मा

नानक जमपुर बदे मारिये ज्यों सन्नी उपर चोर महला पंजवा परत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाओ नानक नाम भी हो।

वस्त पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गणाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा।

जितखा दै सब फुक जाए। कृष्णा मूल न हो गई नाम वसे मन आए। बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब चलाना आपके ले मिलाए महला तीजा। जिया अंदर जियो सब

सिमा हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काना सब चुकाए सी मिहु उठा छे बरलाए सब तरक पाई हरियावली अनजमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर किसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीत पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख सुख ले जाए जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवै चढ़े सवाइया तुस देवै आप दया।

रावण हूँ ते अधिक सतर्पत छिन में गए दिलात। हर के संत सदा सिर पूजो जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद के सत्संग मिलात। मात पिता बनता सुत संपत अंत न चलत संगात, कहत कबीर राम पद।

करो बिनो गुर अपने प्रीतम। हर बार आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा, लालवती गुण गावे बरसपना में।

जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहा गण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागण अस्थिर वर सोहा गहरी सोग विजोग तिस कदे ना व्याप हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा की तो पे उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद

जिन तन तिरका साब न जानिया सा बिलखो बदन कुमलानी। पई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी। बस कना मेरा तुर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम। जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यो। हम जिन भगत सुहावी मुक्त पाए गुर दर्श दिखाया। जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा। तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया। दौड़ न पाओ जल फेरा अपने तिर हर देख विदासी। तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन स्यो सत साची। गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले। सरद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर। गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मलार। पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिखै बिकार। दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार। महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे। जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दोष।

एन सुलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार। गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार। काया महल मंदिर कर हरता तिसने राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बुलाई है।

न जाए क्या कर आंख बखानिए मारे रहाओ ऊपर बर समान पे आल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा ना हो कथनी बदनी रहे निवरात सो बूझे हो है जिस बात एम से अंतर रहे निवलाए सोई पुरख जे सच समाए जाप कुलीन सेवक जे होए ताता कहना कहो न कोए विस्नाती सेवक होए नानक पन्या पहरा सोए मल्हार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख पूख एक दुख सकतवार जमदूत एक दुख रोग लगे तन काए वैद ना पोले।

मानसता तल तत में सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से सा चैन आए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम।

जिस ते हुआ किसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं सबद जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर के सबद सुभाए, मन रे हुकम मन सुख रोए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बच्चे तिस बिघन ना कोई रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए। गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोची है पये किरत फिराए। सतगुरु पेटिए मन मर रहे हर नाम वसे मन।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए, सब देकार कमाए, नानक नाम चलाए तू, हर हर दर शोभा पाए, मलार मैला पी जा, गुरमुख कोई गिरना बूझे।

समाले गुरमत सत्संगत ना बिछड़े आंदन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बक्षे पलत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए मलार में

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी।

सबद सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कदे ना चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए। ए वेला सुर हाथ ना आवे अन दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे ना बूझे विस्ता मैं समाए। गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम।

एक बिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द हर

मन गिरही के एहु मन उदासी के एहु मन अवरण सदा अविनाशी के एहु मन चंचल के एहु मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत।

नानक गुरमुख विरला कोई। राग मल्हार मैला चौथा कर पहला चौपदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद अंदिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दुख विसारी। सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी। नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी। हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर मैं तारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथयानी केदार था प्यो महसारी काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थाते सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

देखे मेरा मन बिकसै हौकिन कै सद बल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साग सखा।

इतना ही हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, ओए आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दुख दुबदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

खीर आधार बार्क जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार संभाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बार्क पिता प्रभु दाता फूले बार्क अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बार्क बपरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी, नवनिद नाम निधान गृह तेरे मन बाँचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरम्भियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी। रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निर पाए जब त्रय आए बसे।

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहा।

जगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हों एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पै मन निर्मल गुण गाए रंग रांगी एहो मन दे किए संत नीता कृपाल पै बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जी कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती एहो मैं की टीठाई तई निमाणी शरण एकता की गुर सब गुर पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

कर कृपा किलवित सब काटे, नाम निर्मल मन दिया, गुण निधान नानक मन वसिया, बहुर दुख न थिया, मल्हार महला तन्यवा, प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारे, रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आशा, संत जना तह करो बेनंती, मन दर्शन की प्यासा, बिछड़त मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दीजै, नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय, मल्हार महला तन्यवा, अब अपने प्रीतम स्यों बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई, उदोत पयो पूरन पावी को, पेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल विनाशे, पार ब्रह्म लिवलाई, करो संसार कथन पै सागर, हर नानक चरण ध्याई, मल्हार महला पंजवा, तन हर बरस सगल जग छाया, तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ।

दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस्ती जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म पसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार। गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो। सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मनार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आत्म मिलाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए, ताकि कीमत कहीं न जाए। कर कृपा पूरन सुख दाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सतगुर जेवड़

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाये वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मलार में

गुरमन आर प्रेद आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृद।

नानक प्रयो प्रीतम किया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल दिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाए शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलप करे बिल लाई कान हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाए मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काशवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

सर्व सिरमोरा काल विकाल पवन पै खंजन कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

जुड़के शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज करवा साते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर सब सिंजापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पैर।

समाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दी से सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जाचे हृदय समाल, रहाओ एक जी कै जी आखाही, जलत तरती बूढ़ी जल माही, सर्ग जी की ये प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फांस पड़ी

मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी न पाए।

वेद बाणी जग वरतदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहै मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

केवट अवर न कोय आपे बक्षे मेल लये चरम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्ष मन संतोखी है सच रहे निवलाए।

को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाये ते तैसै सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करें विचार मुक्त कदे ना हो वई नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम न लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

है। हर सिउं रहा समाये, मल्हार महल आतीजा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे, गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी।

आप उसको आप मिलाया, तम पंजन हर राया, आचर्य स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया, महा मंगल सुख उपजे, गोविंद गुण निध सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया, बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया, वार मलार की महला पहला, राणी कैलाश तथा मालदे की तुन, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहस्य, ज्यों उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर परे सबर ताल, अंदर रचे सच रंग, ज्यों मंजी छे लाल, कमल विग से सच

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर

तू सच्चा मन सच महला पहला हेको पादर हेक दर गुर पौड़ी निज थान रूड़ो ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत बिछोड़ चंदो आताणिया गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जेवस है चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां करतन होए। महला पहला नानक सावन जेवस है चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना तिस बाप न माए किंतु जाया ना तिस रूप न रेख वर्ण सबाया ना तिस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दै लाए आप छपाया।

कंते चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथु पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवानिए। सत संगत में

निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिनकन तैस्यो मन पंग पौड़ी दोवें तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवें विच तरम फिरै रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

वर्षे लाए झड़ी नानक पाने चले कंत के सो माने सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपने इसमें गए हट किछना।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

वन तेन हरया होए। गुर प्रसादी पाई विरला बूझै कोए, बैंदिया उठदिया नित बिहाई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सद ही वरसदा, गुरमुख देवे हर सोए महला तीजा। तलमल होई मेदनी हरदास परे लिवलाए, सच्चे सुनया कन दे तीरक देवे सह सुवाए। इंद्रे नो फुरमाया बुठा छह बरलाए, अन तन उपजे बहु कणा कीमत कह न जाए। नानक नाम सलाए तू सबना जिया देंदारी समाए, जित खावे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए। पौड़ी हर जियो सच्चा।

लाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग करे नहीं, जो हर के अंक समाए।

अमृत हर का नाम है वर्षे कृपा धार। नानक गुरुमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए। गुर के शब्द विचारिये गुण में रह समाए। अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए। किसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हौ बलिहारी गुर अपनी जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए। जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए। बिन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए। गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए। श्लोक महला तीजा बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए। एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मनिए तिख उतरे चढ़े चवगल वन। महला तीजा बाबीहा जल में तेरा वास है जल ही मैं फिराहे। जल की सार न जानही ता तू कूकन पाहे। जल फल चहु दिस वर्ष दा खाली को ठाव नाहे। एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के नाहे। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया। गुरमुख नाम के आए तुझे समाया। जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया जला बिंब असराल तिने वर्ताया। नील अनील अगम सरजीत सवाया अगन उपाई वाद पुख तिहाया। दुनिया के सिर काल दूजा भाया रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा यो जल सब कै वर्षवा वर्षे पाए सुवाए से बिरखा हरि आवे।

सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख

कोई इक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई इक सवा सदावे संत धन दूजे पट खोई इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई विणना में बाजारिया पिहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी आपे जगत।

अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया कोई न सके जमताल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वर्ते सच सच्चे सबग निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सोसा लाई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे वही एक पाला टक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्न जला में अंग आप विगो वही गिणना में तनसार क्या कह रो वही सोहन खत्म द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार मेघे नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार नदरी सतगुर पाई है नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार ना

केते मंग मंग जाहे महला पहला। सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंज सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी। अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सबका शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकडाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए।

गुर कै शब्द सलाहिए अंतर प्रेम प्यार बिन प्रीति पगत में हो गई बिन सतगुरु ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ढाडी करे पुकार जेहे दान संतोखिया।

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजै नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दोए नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे दुख नानक सच्चे ना।

गया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ, किल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सिकदारा एना पर्याना।

नौकुल बंद, पूजे प्राण होवे फिर कंद, कहां से आया कहां यो जान, जीवत मर्त रह परवान, हुक्मे बूझे तत पछाने, यो प्रसाद गुरु ते जाने, होंदा सरी अज्ञानिक जान, ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी, पढ़िए नाम सलाहा, होर बुद्धि मिथ्या बिन सत्य।

नास आप छुटे न छूटी है नानक बचन विनाश महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंगा मार होम जग किए देवतिया की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने हर कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंदेशों क्या कही है कहे ना कहे आबूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त में पन्ने मच्छी मांस न खाही।

है मन भाया पाल चलाए बन कोई न रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे प्रहार अंदिन पक्षी फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर में

मंडल लिव लाए अकथ कथा विचारिय मनसा मन समाये उलित कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजप्पा जाप ना विसरे आज जुगाद समाये सब सखिया पंचे मिले गुरमुख निज करवास सबद खोज एवं कर लह।

कम करीन तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया। पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया, मन तो आना तू कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना नित करे सवाया, आपस दुनिया खुनक नाम खुदा।

सो कराश्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे काल कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावना जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

कारण राव सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनन तर तार अपवित्र कर्मानिय रे जैसे कागरा करत विचारं भगत पगौत लिखिए तेह ऊपरे पूजिए कर नमस्कारं मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा अब विप्र प्रधान तेह करें।

पूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के केद सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर करें डंडौत।

हा पियो कहो रविदास पयो जल लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नड़ा चौक दे महल।

मिल हरिया हों बल बल बल बल साथ जना को मिल संगत पार उतरिया रहा हर हर कृपा करो प्रभ अपनी हम साथ जना पग परिया तन तन साथ जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतित उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वसगत करिया ज्यों जल तंत पसारे बगत ग्रस्त।

किलबिक दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फांस। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव, नाना रूप रंग हर केरे, कट कट राम रवियो।

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम बो

गावे। गुरमत हो बल बले हो बल बले, जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश, एका जी की चै लख बीस। जप हर हर शब्द जपीस, हर हो किरपीस राव। हर कृपा कर स्वामी हम लाए, हर सेवा हर जप जपे, हर जप जपे जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को, हो कुमकुमे कुमकुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम। सब संगत मिल पज राम, बड हो पाग मथाम। रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित कर, अनदो अनद पज राम राम राम। राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुरु सतगुरा। सुख होत हर हरे हर हरे हरे, तज राम राम राम। सब शिष्ट तार हर तुम कृपा।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाई है हर ब्रह्म जोग हर पाई है सत्संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कपाट तू

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आस

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निदान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जा को सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पंजवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर द्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पहे दयाल कहो नानक कहो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की।

परम बिन से दुख डेरा, जा कै हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहो नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बन

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा।

सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई।

ऐ समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

सतगुरु प्रसाद। कतिय संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाई है मां।

पंजवा साध संगत निध हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ। संत रेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल विकारे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मन तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ। ईत ऊत कहाँ लोबावे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ। आनंदा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस पी।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो,

तोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीरे।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाया।

जगत उदाहरण नाम पै तेरे, नव निद नाम निदान हर के रे, हर रंग रंग रंग अनूपे रे, काहे रे मन मोहे मगने रे, नैनो देख साध दरते रे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाले।

बरना सा को एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन में रे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बर्त नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

जो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

उदरते हर ध्याय रहाओ। सहसार गार विकार सागर पतित मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आपका डो राख लेहो गो।

सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाओ। कनिक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात। मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात। रूखो भोजन पूम सै।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप। नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप। बिनस जाए

ओही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद तई मिल्यो नाम आधार दुलभ।

सहज सुभाए आपने आए, कछु ना जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ, संजोग मिलाए साध संगाए, कथु ना जाए करें बसाए, गुण निधान प्रगट्यो ए चोले, चरण लुभाए आन सजाए, थान सनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कान

पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है, हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई, कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जपै

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ

मिल सतगुरु नाम सियावे गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावे गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्त लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी लग

सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुर।

मन गुरमत चाल चलावे गो, ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो राहो, चल तो चले चले दह दह दिस गुर रा।

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो माया पुयंग तिस नीड नावे दिख चार चार लिव लावे गो स्वान लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर गुण गावे गो पंकज मोर।

ज्यों गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर सरन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए मिल साधु नित पजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन सगले जंत पजो गोपाल, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परम।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हों मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर साल आया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या

पौड़ी। तू थाम सनंतर भरपूर है करते सब तेरी बनत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बो बो विद पांच उपावनी।

सतगुरु मेले मुख गुरु मुख हर समझावणी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखौ मैं कग्गी मार जिन हर हर नाम न चेतियो तिन जुए जन्म सबहार। गुर तुठे हर चेताया हर नामा हर उर्धार जन नानक ते मुख उजले सच्चै दरबार। महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार। वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर। जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत उत्मा गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा। जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमती। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विसेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है।

जन नानक नाम से आया, गुर बचन जपियो मन चीत महला चौथा, हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग, गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। सुध आपे जगत उपाय कै सुध आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

काट काट अंतर राव रहया, जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी सस चंदन जस तसिया, हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहां भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया, जे ते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम से आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिनको क्या दिन से, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद पाग मथई, जह दरगे प्रभु लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभु स्वामी, जन हर हर नाम

आई पवे हर जाने जाको राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पहकाने ताको कोई अपर ना साके जाकी पगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विदान देख जन जो खोटा खरा इक निमक पछाने ताते जन को आनंद भया।

जन नानक को हर कृपा कर दी जय। सद बसे हृदय मोहे हर चराने, कल्याण महला चौथा प्रभ की जय। कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हो तुमरी करो नित आस प्रभ, मुहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारिक मुगद के आन पिता समझावेंगे, खुद खिन खिन फूल बिगाड़ जगत।

जो हर पावे भगत सिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे, हर आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखा।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरण।

रामा राम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाओ। कास्त में ज्यो है वह संतर, मत संजम काढ़ कटी जै, राम नाम है जोत सबाई, तत्

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दीजे बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख ज्योत।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू

मन तन अर्थ करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

जो पीप पलास खाए ली जाए, सब नर में प्राणी उत्तम होए, राम नाम में बास बसी जाए, निर्मल निर्मल कर्म बहुकीने, नित साखा हरी जड़ी जाए, परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास जगदी।

सिर दी जाए। नाम बिना नकते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए। साकत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जाए। जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जाए। नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए। कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए। किल विख जैन हो खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ। मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत परसन को दान दी जय। त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय। काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय। अंतर अगन

जो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख का डे अमृत पी जय। साकत स्वान कही है बहु लोभी बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस काढ़ कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास होए मन अंतर साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे दिख दुबदा काड कदी जय। परम सुखे बहु उब सुख कही है मिल साधु संग हरी जय। काते

जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महासंस बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज परवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला

ए तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा, जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे। एते गुण एसियां चंगियाईयां दे ना पछोतावे, तुद सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई। जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। करवाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुखमासा, सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा। औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला। जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई, गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जा के आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई, संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला कांका कहया दर परवान, दिख अमृत दो संकर जान। क्या कही है सर्वे रहा समाए, जो किछ वर्त है।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान तीर्थ नहीं कोए सर संतोख पास गुरु होए रहा गुर दरिया सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरे सतगुरु पाए पूरा नावन पशु करे।

रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पर करपा वह मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हों पै पै मांगो दे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर काम कराखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछड़ा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नान करवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने न वाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो किछ करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहा जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर परियत है तैसो ही यो खेल खत्म का ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी

एहो रहा निर्वाण, जिसते होआ सोई कर मान्या, नानक गिर ही उदासी सो करवाण। हरवाती महला पहला, दिस्त बिकारी बंगन बांधे, हौ तिस कै बल जाई। पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन वार।

करवाण ताको समझावन जाये जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक

जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए, जन्म मरम दुख काटी है नानक छूट सुनाए। प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा, आसा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए। जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहा, कहो न बूझे अंग न सूझे।

ठोर न पावे जब लग दू जी राई एन सजिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे चूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के सबदे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने मैं मैलो उजल सच कोए उत्तम आख ना ऊंचा होए मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार तू बच्चे जात पत होए नानक कहे कहाँ वै सोए हरवाती महला पहला खाया मैल हदाया पेंदे कर की हान बक बक वाद चलाया बिन नामे बिख जान बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया दिबल चाग सहज परगासिया रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबा दे मारिए छूटसा चैनाए जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो गुर सबदी विचार ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार अजर जरे नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई रह सुरंग सुरमाई स्पाई पैनन खाना चीत न पाई सात सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

भगत करी कराहे मोर, अंतर वसै चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर दीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रांगन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विधि जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदस मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु।

आया तेरा रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसम रसाए राते रब रहा प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथो हस्त में पीछिया।

दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने, अंग दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराचित काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहा करे बपुरा जन बरते, गुरमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना रहाओ, गुर उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जा तो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आप पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, साथ शब्द मन मानिया, राज करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरमुख बिरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहाओ, हम दिन पगत करो दिन राती, इस जुग का लाहा भाई, सदा जन निर्मल मैल न लागे, सत नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुण यारे को बख्श ले स्वामी, आपे लेहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे देहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टो बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ, गुरमुख सालान से साध पाए।

ना सो हुआ न होग। हर जियो सना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करे कृपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, ओह ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोर दूजे पाए लागे, ओ जमे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाए, नानक नाम सलाए सदा तू, सच्चे शब्द समाए। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुखदाता।

होई गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक कस्ते उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा अमृत नाम को जन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत्र दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित बिद क्यों पाये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर बान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पद चारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मुफाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु विदबाल सत्संगत मिल मत बुद पाई हौ छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुब दे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक दावत सुनत दौ पै मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक राव जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट वनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ धारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुब दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर्धांबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान
सुन मन गुरुमुखता में मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख न विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुरु सेव होए परम गते, हरख सोगते रह निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस राया सोई जाने, तेख तेख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे, राव जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा।

तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए, बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नहीं माया, सड़क पलक जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया, महामुक्ते किया ज्ञानी, गुरपूरे की अकथ कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे भाग पाइए हर सेव, प्रभाती महला संजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुख मिटाया, हम बारिक शरण प्रभु दयाल, अवगण काट किए प्रभु अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल, राव पाप पाप बिन से किन भीतर, तय कृपाल गुसाई, सांस सांस पार ब्रह्म आरादी, अपने सतगुरु के बल जाई, अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत न पाये, लाहा खाट होइए तनवंता, अपना प्रभु ध्याइए, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिकसग नासे, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगह शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे,

पाए भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सतसाहा। हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपुरा पाइए वड पागी।

महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सुगुण सुजान गुर पूरा पाये वडबागी दर्शन को जाये कुर्बान रहाओ किलगित में तो शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आप प्रगास चरण कमल मन माये निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्म ताके आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पर कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला कन्यावा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए समाया। आवागौण तुद आप रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर पे ते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तों कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, हम मैं विच्चों सबक जलाए।

जब तब संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख ने तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंधा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार,

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात।

अगर पछाण प्रभाती महला पहला दक्षिणी गौतम तपा अहल्या स्त्री किस देख इंद्र लोग।

चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर झूठा क्यों सुठ होए, सब जी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

हर जस कर्म तरम पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबल चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार।

हर मंदिर में नाम निदान है, नाबू जय मुक्त गवार, गुर प्रसादी सीनिया हर राखिया उर्धार, गुर की बाणी गुर ते जाती, जो शब्द रते रंग लाए, पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई, पारस पोते है कंचन भया, कीमत कहीं ना जाए। हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए। प्रभाती महला की जा, तय पाल जागे से जन जागरण करें, होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए, जित मार्ग हर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुम उपजे, दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोने, हर राख्या उधार, ऐसे ओके सुख गणा।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पंचमा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मीठ मो

कहो नानक गुर किया निबेरा, प्रभाती महला पंजवा। मन में क्रोध महा

काला अंतर कपट सुरे दिल काला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया कुंवर काप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गे के नस्ता देश छोड़ पर देश है धाया।

माता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाइये महा दुखियारी, बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाइये जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौरना ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम तिलगत सब काते, धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न पै गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विकाल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीरथ स्नान करी जा, चरण कमल निम्ख हृदय धारे, गोविंद जपत सब

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया।

तन लाल नामा साच समायला करभासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा।

हृदय अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत

तिल पूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पग नाचस चित्त अकर्मं एलं पट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

अवसर भी हाथ है, जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

का विनोद सुट कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

धने दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीत पाल के अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं भरं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अगखंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

सातुरे भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडते कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊ

गुस्साईन्द्रस्वरूपेण सिमरन् सर्वत्र जीवने लब्धं संत संगेन नामित स्वस्थ मार्ग हर भक्तने मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलके

श्याल खरे बिखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर।

परम बादन अवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जन मने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

हर लब्दो मित्र सुमित्तो विदारण कदे न चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अप जसन मिटंत सतपुत्र सिमर तवर गय गुरु मंत्रणे प्रीत।

مٹھ کٹت انوپ مرم نہ جانی ہے گاہک دنی اپار سو تت پٹھانی ہے چتے چت

पीर अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले परबात जो नर

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पूछ।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरै बित कबीर सेवा को दोए भले।

कवि केवल काशी घात साबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे

केवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख को श्री पारख आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं।

जीवंते पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि हूं ते

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

ओ लबी वाते थप्पर तू मैं क्या होए चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड्डी सी मोई आके।

हंसना को दरा खाए। चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए ताले, फरीदा सर परिया पी चलती थके कवले कले। फरीदा इत सिराने तोए सवन कीड़ा लड़े मास केतड़िया।

रब खजूरी पत्तियां माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा तो उम्र हथ पवन फरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंडे काज अजय सुरब न बहुड़े देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मासे एदे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास ना तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

अमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे का इतना नू सब सोजी आई इक

रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला तज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सो मिले से वेश करे ओ। महला तीजा काए पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक कर ही बैठिया सब मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जी।

रावणे जिना विसारियो नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे ते रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुमताज अल्ले से साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए विकार अल्ले पावे सो भला तां लगी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै न

बात दाती साहिब संधिया क्या चल किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना सुतिया दे उठाल तू देंदिये सुहाग को तो तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए।

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे किस पावे नानका कागो हंस करे। सरवर पंखी हे परे फाही वाल पचास, तन लहरी गद किया सत्ते तेरी आस। कम से अखर कम गुण कम सुमणिया मंते, कम सुवे सो हों करी जित वस आवे कंते। निमन सो अखर खवन गुण जो बामणिया मंते, के त्रै तैणी वेश कर ता वस आवी कंते। मत होंगी हे आना ताण होंदे हे निताणा, अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। एक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी, ह्याओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे सबना मन।

पर भरयो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापत देखे जगत जाने कौन तेरी गते।

हार नहीं तुम भक्ते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह कर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उपत कर लो एक निमक तो धर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर अथते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दिन क्या बखाने हाथ बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भग दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बसन है। हाके बल बल बल बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सत संगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो, सचे सत निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

मद माता बिचरत बिकले बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा ये मीठी जी माए हितानी बल बंट छप करत उपाया देखत सुनत प्रभ

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदारण सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बुधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट।

नानक काट भरम भरे। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल झूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देह न ने न नीता माया मत कहा लो मादारो। देह न देह न ने न नीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन एहद करत फौज तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा। चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अस तावर बहुत जौन भम्यो अत भारी। छिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस

दस्यो जम तो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गरो है। प्रेम भगत उधरे से नाम के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर कृष्णा बिन सजाए हर।

राज जोग दिन माणियो। गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दत्त स्मरंत गुणा। गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत लेव

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

जाति दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे। ओ जो से

सत संगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लैना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकल गत गुरु परवानी जाके दृष्ट अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सनाओ सकत बिदार कहो कीरत कल सहारी सपद दी तुम झारे लेना जगत गुरु परस मुरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अभ पाप परासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रित पालन आत्म रत संग्रहण कहन अमर

गरल नाश कन न थयो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिनास जागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कल मंत्र सन सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समा

बो है नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ राव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अम्बरीक भव जल करिया उदो क्रून तिलोचन नामा कल कबीर तिल विख हरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तीस धयावे जसी कपी सर मनवसया सोई नाम सिमर गंगे पितामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुरु अमरदास तें पायो नाम धयावे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग सम कर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु कुछ दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुज

सुख पायो अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाय।

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो मुखों भगत उचरे अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान।

चरण तपर सकयत चरण गुर अमर पवल्ले, हथ तपर सकयत हथ लगे गुर अमर पे, जी तपर सकयत जी गुर अमर भजे।

सुपन एक पर तख एक एक समेनो तीस एक अर पंज सिदे तै तीस नखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जालक भणे तू एक लोणे एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामे समानी जे मत लोचन चिक

गुर अमर रास निज भगत है, देश दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए, कहुं पाठ बिना से।

गुरदास कर सिंह अभोल भय गुर चुक एक बंधु गण जो को रहे जासमंत मानो लहे जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिखे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद नैना।

तात गुण कवण वखाणो, जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोल तो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे, गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल।